मैं खिलाड़ी तू अनारी फ्रॉम द ईयर 1994 उदित नारायण एंड अभिजीत. वी गोना कंटिन्यू नाउ विद द वॉइस ऑफ द प्रिया सिस्टर्स श्री कृष्णा एंड द सॉन्ग इज अल्लाह Vekanta Paralo. This is a Telugu song, so let's enjoy on Lemon Radio.

जब जब क्या हमको देखा है, that's the voice of लता मंगेशकर and किशोर कुमार. We're going to continue now with the voices of नेहा कक्कर and यश नर्वेकर. The song is एक तो कुम जिंदगानी. Let's enjoy.

मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे राज वॉइस ऑफ उदित नारायण एंड अलका याग्निक वी गोना कंटिन्यू नाउ विद अवर तमिल मास्टर तमिल सॉन्ग दिस वन इज डन बाय